0: has gained momentum. After Trisha's husband, Samart Singh, has been sent to 7-day police custody and a Delhi AIMS team has arrived in Bhopal for the second autopsy of Trisha. A medical board comprising of 4 senior doctors from Delhi AIMS has landed in Bhopal to conduct a second autopsy of Trisha Sharma. This following the Madhya Pradesh High Court's order. Meanwhile, the Supreme Court has taken suo motu cognizance of the case. Chief Justice-led bench will hear the case on the 25th of May.
1: पुलिस रिमांड मिली अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं अब वहाँ पे उनके खिलाफ समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस साक्ष्य हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी और त्रिशा के अगेंस्ट कोई भी जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दिए कि त्रिशा ड्रग्स लेती थी तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्रिशा यूज़ करती थी उसकी अलमारी में उसके पलंग के उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है तो इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है आज भी वो उसी घर में रह रही हैं तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था
2: दिन अभी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए चार्ज लेना चाहिए इस केस का ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके
3: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए
2: जी बिल्कुल वी आर होपफुल फॉर दैट
3: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे
2: नॉट एट ऑल बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है तो देयर वाज नो रिमोर्स एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग इट वाज एविडेंट वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं जानबूझ के हंसते हैं जो लोग उनमें से एक
0: Well, 11 days after Trisha Sharma was found dead inside her in-laws' home in Bhopal, the prime accused and her husband, Samart Singh, is finally in police custody. A Bhopal court has now sent him to 7 days of police remand as investigators widen the probe into the mysterious death that has in fact even sparked allegations of dowry harassment and evidence tampering and even a possible cover-up. Here's a special report that breaks down the latest.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create

0: स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: बदलता नहीं, अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है NDTV नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ NDTV पर।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द टैलेंटेड फोटोग्राफर टू क्रिएट द बिग ड्रीम। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी।
6: Well, it's day two of the United States Secretary of State Marco Rubio's visit to India. Day two will see key bilateral engagements with Mr. Rubio, set to hold crucial strategic talks with the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, in New Delhi at Hyderabad House. That's in about an

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
4: From rural classrooms to global campuses, India's education story is changing. The question is simple. How do we make every child future ready? Visionaries, disruptors, policymakers. One big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
4: From rural classrooms to global campuses, India's education story is changing. The question is simple. How do we make every child future ready? Visionaries, disruptors, policymakers, one big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.
2: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाह मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
2: सो मेनी अटैक्स,
1: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
2: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
3: War-struck country.
1: Hard questions.
3: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine.
2: In France, in Italy.
3: At Srinagar.
2: I am Mr.
3: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom, only on NDTV.

0: The run has finally ended. 11 days after Tusha Sharma's death, absconding accused in the case, Tusha's husband, is finally behind bars. After a medical examination, Samarth was produced before a Bhopal court, which sent him to 7 days of police remand. The manhunt ended earlier after Samarth Singh dramatically appeared before a Jabalpur court in an attempt to surrender.
1: Police remand mili ab ye actually to dekhiye bahut late ho gaya hai. 10 din aap rahe hain aur is case mein durbhagya se ye hua hai ki Giriwala Singh ko zamanat agrim zamanat milne ke samay aisi condition nahi lagayi gayi ki wo us ghar mein nahi reh sakti. To wo shuru se us ghar ko enjoy kar rahi hain. अब वहाँ पे उनके खिलाफ समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंस है साक्ष्य हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी।
0: However, Samarth's counsel said the court granted police remand despite their objections. He added that they will move a bail application after the remand period ends.
2: इन्वेस्टिगेशन एमपी पुलिस करे सीबीआई करे हमारे लिए उसमें कोई वो नहीं है हम तो हमारे राइट्स के लिए जाएंगे बेल के लिए जाएंगे देखिए पहले तो रिमांड का टेन्योर खत्म हो जाए उसके बाद हम बेल के लिए अप्लाई करें
0: Meanwhile, police are probing several critical angles in the case, including discrepancies in the postmortem, rooftop access to the house, possible destruction of evidence, and the role played by family members.
3: इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा 7 दिन की रिमांड दी गई है 7 दिन के रिमांड में जो भी घटनाक्रम है और जो आरोपी समर्थ उस समय जब्ती दस्तावेज साक्षी जो भी कानूनी प्रक्रिया लीगल दस्तावेज के तहत हमें प्रक्रिया पूरी करनी है और इसलिए हमने मांगे गए हम उसको समय पर करेंगे
0: साइमल्टेनियसली एनडीटीवी एक्सेस्ड एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ द टेरेस इनसाइड द कटारा हिल्स रेजिडेंस वेयर तुषार्स बॉडी वॉज रिकवर्ड NDTV also attempted to confront Samarth Singh with a series of tough questions. However, Samarth avoided responding to the queries and remained evasive as police escorted him away.
4: So as you can see, Samarth has been brought by the...
0: Meanwhile, in a major development, the Madhya Pradesh High Court has ordered a second autopsy in the case. A panel of doctors from AIIMS Delhi will conduct the second postmortem in Bhopal. With this, the political and legal pressure in the case is also mounting on Samarth Singh's mother, Giriwala Singh, a retired judge and Consumer Forum chairperson. The Madhya Pradesh government has challenged the anticipatory bail granted to her. Arguing in court that the relief was granted in haste. As the CBI prepares to step in and forensic scrutiny intensifies, Tusha Sharma's family says they are still searching for one thing, the complete truth behind her death.
5: सात दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सीबीआई टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें सीबीआई को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए चार्ज लेना चाहिए इस केस का ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके
0: बट विद अ सेकेंड ऑटोप्सी ऑर्डर्ड द सीबीआई स्टेपिंग इन एंड क्वेश्चंस माउंटिंग ओवर द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स इट इज टू बी सीन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन त्रिशा शर्मा डेथ केस

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
3: Badalta nahi, ab badhta Punjab. Nave Punjab ka nava swag lekar aa raha hai. NDTV Nava Punjab Summit. शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ NDTV पर।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
5: so many attacks,
4: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
5: It's incredible.
4: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right, and Center.
4: Hard facts.
5: War-struck country.
4: Hard questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine. In France. In Italy.
7: At Srinagar.
5: I am Istikrar.
8: Vishnu Shom for NDTV.
4: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: The run has finally ended. 11 days after Tusha Sharma's death, absconding accused in the case, Tusha's husband is finally behind bars. After a medical examination, Samarth was produced before a Bhopal court, which sent him to 7 days of police remand. The manhunt ended earlier after Samarth Singh dramatically appeared before a Jabalpur court in an attempt to surrender.
1: Police remand mili ab ye actually to dekhe bahut late ho gaya hai. 10 din aap rahe hain aur is case mein durbhagya se ye hua hai ki Giriwala Singh ko zamanat agrim zamanat milne ke samay aisi condition nahi lagayi gayi ki wo us ghar mein nahi reh sakti. To wo shuru se us ghar ko enjoy kar rahi hain. अब वहाँ पे उनके खिलाफ समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंस है साक्ष्य हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी।
0: However, Samarth's counsel said the court granted police remand despite their objections. He added that they will move a bail application after the remand period ends.
2: इन्वेस्टिगेशन एमपी पुलिस करे सीबीआई करे हमारे लिए उसमें कोई वो नहीं है हम तो हमारे राइट्स के लिए जाएंगे बेल के लिए जाएंगे देखिए पहले तो रिमांड का टेन्योर खत्म हो जाए उसके बाद हम बेल के लिए अप्लाई करें
0: Meanwhile, police are probing several critical angles in the case, including discrepancies in the postmortem, rooftop access to the house, possible destruction of evidence, and the role played by family members.
3: इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा 7 दिन की रिमांड दी गई है 7 दिन की रिमांड में जो भी घटनाक्रम है और जो आरोपी समर्थ उस समय जब्ती दस्तावेज साक्षी जो भी कानूनी प्रक्रिया लीगल दस्तावेज के तहत हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी है और इसलिए हमने मांगी है हम इसको समय पर करेंगे
0: Simultaneously, NDTV accessed exclusive visuals of the terrace inside the Katara Hills residence where Tusha's body was recovered.

0: From rural classrooms to global campuses, India's education story is changing. The question is simple. How do we make every child future ready? Visionaries, disruptors, policymakers. One big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.
1: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: around 650 marks.
1: तैयारी तो किसी भी चीज़ की, सपना या तैयारी तो बचपन से इंसान देखता है उस चीज़ के लिए. तैयारी शुरू से ही होती है, पहले कदम से ही तैयारी शुरू हो जाती है किसी की भी चीज़ की. बचपन से इसका सपना है कि डॉक्टर बने. बहुत अच्छे से पढ़ने में बचपन से ही बात मानना, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, ये तो शुरू से है रहा है इसका.
2: प्रिपरेशन करने में तो सच बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एकदम अंदर से मन टूट चुका है इस चीज़ को लेकर के.
3: Just after the exam is over, you know, the body it is which goes in an overdrive suddenly comes down. There's a crash. Fine. And the fatigue sets in. Fine. At that very moment, you know, during that time when the body is fatigued, the mind is fatigued, when one person comes to know that, you know, he or she has to appear for an exam in the coming days, is very challenging. It's emotionally exhausting.
0: Madhu Shukla comes from a village called Bithauli in the Siddhi district of Madhya Pradesh. This is her room in Bhopal. In one corner stands an old iron bed without a mattress. Madhu spreads a sheet over it and spends her night here. Heat, loneliness, and mounting mental pressure, everything feels trapped within the walls of this room. An uncle pays for her coaching fees, travel and living expenses. Madhu has been preparing and attempting to crack NEET UG for 4 years. And in 2026, she was confident of a 600 plus score that would get her an admission into a medical college.
2: ये मेरा second attempt था. Emotionally तो ऐसा लगता है, देखिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है. अंदर से मन नहीं करता है, अंदर से कई बार चीज़ें वही रिपीट करना है, बार बार वही रिवीजन करना है, वही रिवीजन करना है. बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता है, ऐसा लगता है सब कुछ किसी काम का नहीं है. कई बार तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लें.
3: Basically, we need to observe the behavior. So, in the behavior, the person's interpersonal connection would be affected. The person would be more irritable. The person may be more withdrawn, or sometimes the person may act out, be more aggressive towards persons whom they would have, behaved properly. They might involve in activities which give them immediate pleasure. For example, getting hooked to social media, sleeping for long hours, or not sleeping at all. You know, when it comes to the food habits, the nutrition might go for a toss. You know, they might eat a lot of carbs. You know, proper nutrition might not be there. Might not go out. You know, physical involvement, physical activities might not be there. So these are some of the areas, and these are some of the behaviors. If we notice in a person, then we should be careful about the emotional, burnout.
0: Every day, Madhu spends around 30 rupees traveling from Anand Nagar to her coaching classes in MP Nagar. Her family somehow manages to send 2,000 rupees for the rent. Her father took loans for her education. Her mother mortgaged her jewelry.
4: जिस दिन नीट एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं छुट्टी पे थी, घर पे थी, तो मेरे पास एकदम से बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, और उस टाइम तक हमने न्यूज भी नहीं देखी थी. बच्चे ऐसे थे जो लिटरली रो रहे थे फ़ोन पे, तो मैंने पूछा क्या हो गया, और वो बच्चे ऐसे थे जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे, दूसरे स्टेट से आए हुए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, मणिपुर से आए थे, वो यहाँ पीजी लेके रहते थे, और उनकी कंडीशन ये थी कि उनकी मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी होती है वो उसे गिरवी पे रख के यहाँ

0: ये उन्होंने फीस भरी थी।
1: Lakshya's father is a farmer and he grew up in a village near Jaipur. After he scored well in the class 12 exams, Lakshya's father decided that his son should become a doctor. So Lakshya went to Sikar and joined a coaching center there to prepare for NEET UG. He appeared for the exam in 2026, but when days later the exam got cancelled, it was emotionally hard to accept for Lakshya. In his family, someone had already suffered. In 2015, his uncle had attempted NEET UG, but then too, his was the center where the exam got cancelled. And he never became a doctor.
2: कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं ना उससे डिसअपॉइंटेड तो है ही ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है पेपर को एक एजेंसी को बहुत एजुकेशन ही नहीं है तो हमारा हम क्या कर लेंगे।
3: एक बार एक साल पूरी तैयारी की फिर उसने एग्ज़ाम लिखा फिर आया पेपर लीक हो गया। बच्चे की तो मेहनत है ही है पेरेंट्स को फिर उसका मनोबल बढ़ाना पड़ता है क्योंकि बच्चा तो टूटता ही टूटता है साथ में माँ बाप की भी जो आशाएं थी वो भी टूट जाती है। सबकी जेब पर भी फर्क पड़ता है बच्चों पर भी फर्क पड़ता है और घर की स्थिति सर मिडिल क्लास लोगों पर तो बहुत इफेक्ट पड़ता है।
1: Earlier, Arnav was preparing while staying in a hostel. But now he has returned home. He has no other option but to start preparing again. But Arnav remains worried about what the paper will be like this time. His mother too is fearful about the uncertainty and confusion that Arnav is undergoing as he continues with his preparations.
4: गार्जियन अगर प्रेशर नहीं डालते हैं गार्जियन एक्सेसिव फेथ करते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है करने में इसका तो हो ही जाएगा तो वो जो एक फेथ होता है ना कई बार बच्चा उसको बर्डन के रूप में ले लेता है थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा फील होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो सबका एक्सपेक्टेशन है मुझ पर मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मेरे गार्जियन जो मुझे बचपन से यहाँ लाए मुझे पढ़ाए मेरे सर मेरे भैया जो भी सारे टीचर लोग हैं मेरे मैं सबका एक्सपेक्टेशन को मीट करना थोड़ा एक चैलेंज रहता है कि नहीं मेरे को ऐसा करना है ताकि मैं उन लोगों से भी कह सकूँ कि सर आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने आपके लिए रिजल्ट दिया मैंने किया तो थोड़ा प्रेशर रहता है बट ये फेथ भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले आदमी को फेथ है मेरे पे कि मैं कर सकता
0: हूँ। बच्चे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कुछ तो ऐसे है कि रोने लगते हैं डायरेक्टली कि अब मैम नहीं होगा हमसे उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्यों नहीं होगा होगा तुमसे होगा लेकिन कुछ देर के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर देते हैं लेकिन वो मोटिवेशन होता है टेम्परेरी अगले दिन उनका फिर वही हाल हो जाता है फिर उनको समझाना पड़ता है।
1: Harish is from Sikar and this was his fifth NEET attempt. Harish says that if someone truly wants to become a doctor, then the number of attempts don't matter.
5: अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है तो वो चार अटेम्प्ट पांच अटेम्प्ट मायने नहीं रखते आपके लिए लेकिन जो अपने दोस्त जा चुके हैं मेडिकल कॉलेज में उनसे भी अपने को मोटिवेशन मिलता है लेकिन मन में रहता है कि यार मेरा दोस्त जा चुका है मुझे भी जाना ही है तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करोगे ऐसा कुछ नहीं है कि रीनीट हो रहा है मैं डिप्रेस हो जाऊंगा ऐसा कुछ भी।
4: जो रीनीट के पेपर होते हैं वो एक्सेसिवली ज़्यादा टफ होते हैं क्वेश्चन की वाशनेस बढ़ जाएगी तो वो जिस डेप्थ तक पढ़ा था उस तो उसका वाशनेस बढ़ाना पड़ जाएगा तो एक प्रेशर तो ये है कि जितना पढ़े उतना रिवाइज करना है और प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ने वाला तो वो बच्चा पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो जिस भी तरह का स्टूडेंट हो एवरेज हो टॉपर हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो उसको दोबारा और मेहनत करना ही पड़ जाएगा उस पर और ये एक प्रेशर फील होता है।
1: The NEET examination, introduced by the Medical Council of India, was first conducted in May 2013 and it replaced several medical examinations that had been there across the country. That first time, more than 10 lakh students had registered to take the exam. But not everyone was happy and cases were filed in the courts. In July 2013, the Supreme Court of India put a stay on the exam in response to petitions received against the exam and said that the Medical Council could not interfere in the admission

अनफॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट आया नीट का और जो उसके साथ इतना बड़ा केस हो गया है पेपर लीक का, तो उससे पूरी फैमिली हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। और अब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे ये कोशिश करें एक साल तक के पूरी तरह से पूरी तैयारी करें और फिर उसके बाद अगली बार पता नहीं क्या हो। तो ये डर सबके दिमाग में बैठ गया, तो डर के मारे इन्हीं ने कहा कि मैं नीट कंटिन्यू नहीं करूँगी और उसको जो है चेंज करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे प्रोफेशन में आओ, तो क्लैट करो, कोई अच्छा नेशनल कॉलेज लेके आओ और उसके बाद जो है फिर तुम ज्यूडिशरी में आओ और देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करो।

0: NEET till 2018 was conducted by the Central Board of Secondary Education, CBSE. But the responsibility was transferred to the National Testing Agency. NTA conducted the first NEET UG examination in 2019. NEET UG exam is conducted in 9 different languages other than English and Hindi: Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Odia, Tamil, Telugu, and Urdu. While most major entrance exams in India take the computer-based route, NEET remained with the optical mark recognition or OMR technology that reads and captures data from paper forms. Even in the NTA basket of 16 national level examinations, NEET is the only one which remained in the OMR format.
1: अगर हम 2020 से 2026 तक का देखें, अभी तक 2 से 3 बार पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो NTA को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो हो रहा है। तब भी उन्होंने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एंड में बोला कि हमें पता चलते हमने रिपोर्ट कर दिया। उनके रिपोर्ट करने से कुछ फ़ायदा थोड़ा ना हो रहा है, हमें तो वही करना पड़ रहा है। और जैसे कि पेपर के बाद हम तो फ्री माइंड बैठ गए, 20 दिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग अच्छे से थे कि हमारा तो हो जाएगा। पर वो 20 दिन का जो लॉस हुआ, हमने किताबों पे ध्यान नहीं दिया, उसको भी तो सर रिकवर नहीं कर सकते ना। और प्लस फिर वही है कि पेपर भी कैसे भी आ सकता है।
0: Inside Madhu's tiny room in Bhopal, the doctor poster on the wall every day reminds her of her goal in life. Whatever be the obstacle, Madhu still has to struggle on, because in the harshness of life, dreams spur hope for the future.
2: नीट एस्पिरेंट के मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो अपने लिए एक जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है कि हाँ अपन नीट के एग्ज़ाम दे, डॉक्टर बने। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, इन्होंने ही इस एग्ज़ाम को मतलब कि तहस नहस कर रखा है, पेपर लीक करवाते हैं, उनको मतलब क्या है इस चीज़। आप अच्छा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप कैसा करने से जो है अब कुछ नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं है उससे। लेकिन उससे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिनके लिए डॉक्टर लोगों के लिए सिंपैथी होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं इस रास्ते से।

0: तो ये गलत बात है कि आप पेपर लीक करवाते हो जो भी है ये।
1: Days after the NEET UG 2026 examination was cancelled, NTA announced a new examination date. While NEET will be computer-based from 2027, as promised by the Education Minister, NTA clarified that the repeat exam of 2026 will still be pen and paper. The re-exam on June 21st is expected under heightened security and monitoring measures.
2: अभी आपको मतलब दोबारा से वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे दोबारा, आपको देखना पड़ेगा पेपर का लेवल, देखना पड़ेगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब रीनीट अगर ये दे रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, हाँ टाइम थोड़ा कम है।
3: मेरा नाम है लक्ष्य, और मेरा नाम के अंदर ही मेरा लक्ष्य छुपा है।

0: केंद्र माना जाता था। अब कम से कम दिल्ली जैसे शहर में कोई केवल अभिजात वर्ग ही वहाँ पर जाए, ऐसा सामाजिक दृष्टि से भी ठीक नहीं था। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।
1: Now, even as the controversy unfolds, let's also listen in to what members linked to the Delhi Gymkhana Club are actually saying.
2: I think institutions should evolve. I don't think they should ossify. And one of the things that they could have done was to think about ways in which this institution could change. Because its premise was an elitist one. That you can't get away from that. It was a fact. But instead of just saying, okay, let it not exist, you could say, how can you change it? How can you make it more meaningful to more people? Can it become a different sort of place? And I would have, if it had to go, I would have preferred that it would have been looked at in this way.
3: Bada elite club hai. और गवर्नमेंट को अपना सोचना पड़ेगा कि ये क्लब को चालू रखना है। सीनियर सिटीजन्स जितने भी यहाँ पे इतने सालों से मेंबर हैं, उन सब के लिए बड़ा शारीरिक और भी तकलीफ बड़ी होगी, तो इसलिए होना नहीं चाहिए। यहाँ लेबर है, इतने वर्कर्स हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, सबको अपरूट करना बहुत गलत बात है। उनकी फैमिलीज हैं, उनके परिवार हैं, तो गवर्नमेंट चाहिए कि यहाँ ही कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो कि क्लब बना रहे।
1: Viewers, that's all we have on this bulletin, but news and updates continue on NDTV. Keep watching.

0: Well, that's it from me. Remember to stay fabulous, to stay hydrated, and don't be afraid to be in the limelight. For all the updates from India and around the world, keep watching NDTV. This is Mayank Chaudhary with camera person Manoj Thakur. See you next weekend.
1: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: India's education story is changing. The question is simple. How do we make every child future ready? Visionaries, disruptors, policymakers, one big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.
1: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
1: बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की
2: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल वाज द नॉन इंटरव्यू क्रूज स्पेंड सम टाइम विद हिम वी हैव दीस व्हिसल्स आउट फॉर यू एंड द व्हिसल्स आर फॉर द फैक्ट दैट यू गॉट द पोल राइट व्हिच इज क्वाइट फैंटास्टिक
3: वी सॉ यू कैंपेनिंग मैम फॉर द आरजी कॉर विक्टिम्स मदर एज वेल यू नो दैट वाज अ टेलिंग मोमेंट डू यू बिलीव